0: रेडियो सुनो 91.7 एफएम कतार्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
1: एवरकुम हृदय निरंजन ओणाशंसकल

0: रेडियो सुनो 91.7 एफएम कतार्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
1: एवरकुम हृदय निरंजन ओणाशंसक
2: मैटिनी मैशबिल इन लालीटन स्पेशल